ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वन विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड वी आर ऑन फोर साल अवे। बिल्कुल दोस्तों, असी तुहाडे तों सिर्फ फोन कॉल अवे ही हां। ते अज पहले आवर विच दोस्तों मैं विसाखी ते गलबात करांगा, ते दूसरे आवर विच साडे सूबा सिंह जी खहरा साहब ने गीतां दे बेताज बादशाह नंद लाल नूरपुरी जी हुणां ते गलबात करनगे। वंडरफुल शायर, बड़े हरमन प्यारे अपने वेले दे, धरी राम चात्रिक जिस तरह वो भी इन्हां वर्गे ही सन, आम जट्टां दे आम कामियां दे दुख बयान करन वाले, कुदरत दे बहुत नेड़े, मनुखता दे बहुत नेड़े। एहो जिहे सज्जणां नूं साडा फर्ज बनदा कि असीं अक्सर याद करदे रहीए। ते साडे समाज दी जिहड़ी भैड़ी तस्वीर है, इन्हां दा योगदान नंद लाल नूरपुरी जी हुणां दा बयान नहीं किया जा सकता समाज प्रति। पता नहीं किन्ने क गाने, किन्निया कड़ी शायरी, ते भुख न किन्ने इनाम मिले इन्हां नूं, भुख नंग दे हथों तंग पै के खूच छाल मार के इन्हां ने आत्महत्या की। उस वक्त बादल साहब उन्हां दा राजभाग सी, छाल मारन तों पहलां अपीलां कीतियां गईयां इन्हां दे घर तक, सुनेह पहुंचाए गए कि साडी कोशिश मदद करो। जदों खूच छाल मार के मर गए ते बादल साहब उन्होंने 300 रुपया के पता नहीं 500 रुपया दिता, ते उन्हां दी वाइफ ने कहा अगर एहो ही इमदाद सानू पहला मिल गई हुंदी ते शायद नूरपुरी नू खूच छाल मारन की जरूरत ही नहीं सी। दोस्तों, आज इस हिरद लोगों का समाज दे जेड़े समाज का दर्द सीनिया च रखते ने उन्हां दे हालात, ते जेड़े इन्हां दे अपोजिट समाज नूं लुट के खाण वाले ने उन्हां बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहुंदा, तुसीं जानदे हो सारा कुछ उन्हां दे बारे। एनी हाउ, टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.pravasradio.com। हांजी, वी आर ओनली फोन कॉल, वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स। दोस्तों, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। अगर तुसी वी कोई गलबात करनी चाहुंदे हो सज्जनों, अज ते असी कालां नहीं लैंदे, कल दा प्रोग्राम तुहाडा ही प्रोग्राम है, शायरो शायरी दा प्रोग्राम है, आओ हर वारी दी तरह रौनकां लाओ। पर अगर तुसी किसे समाजी टॉपिक ते, किसे भी टॉपिक ते गलबात करना चाहुंदे हो, यू मोस्ट वेलकम। आनू अमेरिका च, जर्मनी च, इंडिया च, जिथे तुहाडा दिल करदा, तुसी साडे नाल मुलाकात नहीं, कॉल करो, असी तुहानू गलबात करन दा मौका दे, मौका ही नहीं देंगे, सगों तुहाडी खुशी प्राप्त होवेगी सानू कि तुसी समाज नू कुछ सेध देने वाली गलबात कीती है। पर तुहाडी गलबात निरपक्ष राजनीति तो दूर ते रिलीजन तो दूर। सो मैं हां जी आपका दो, वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स। दोस्तों, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। अगर तुसी वी कोई गलबात करनी चाहुंदे हो सज्जनों, अज ते असी कालां नहीं लैंदे, कल दा प्रोग्राम तुहाडा ही प्रोग्राम है, शायरो शायरी दा प्रोग्राम है, आओ हर वारी दी तरह रौनकां लाओ। पर अगर तुसी किसे समाजी टॉपिक ते, किसे भी टॉपिक ते गलबात करना चाहुंदे हो, यू मोस्ट वेलकम। आनू अमेरिका च, जर्मनी च, इंडिया च, जिथे तुहाडा दिल करदा, तुसी साडे नाल मुलाकात नहीं, कॉल करो, असी तुहानू गलबात करन दा मौका दे, मौका ही नहीं देंगे, सगों तुहाडी खुशी प्राप्त होवेगी सानू कि तुसी समाज नू कुछ सेध देने वाली गलबात कीती है। पर तुहाडी गलबात निरपक्ष राजनीति तो दूर ते रिलीजन तो दूर। सो मैं हां जी आपका
ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ।

0: ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर
1: तो सत श्री अकाल शुक्रिया धन्यवाद नमस्ते आदाब सारे सत्कारयोग वीर भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी और प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां तुहाडे नाल रल मिल के और अज दे प्रोग्राम दे विच आपां कुछ प्यारे प्यारे गीत गाने सुणांगे ते गाणियां तो बाद फिर आपां चलांगे जी खबरां वल ओ खबरां होणगियां दुनिया दियां अजकल जो कुछ वापर रहा दुनिया के उपर किनिया जंगा लगिया हुई उन्हां दी की सिचुएशन आ अमेरिका की सियासत बारे गल करांगे इंडिया की सियासत बारे भी गल करांगे कि उत्थे की हो रहा सो बहुत सारा कुछ मटीरियल लैके लाल सिंह चीमा हुणी पहुंचे पुजणगे जी उस तो बाद शायद डॉक्टर साहब गुरदीप सिंह संधु साहब भी अपने नाल रलणगे और दो घंटे का प्रोग्राम आपां लैके आ गए हां दिल दी आवाज साडे प्रोग्राम का नां हैगा जी दिल दी आवाज फोन नंबर हैगा जी 732-874-3259 इहदे उपर तुसी मैसेज करना होवे ते तुसी वट्सएप दे उपर भी जाके कर सकदे हो रेगुलर कॉल दे उपर भी मैसेज कर सकदे हो सो सारयां दा शुक्रिया धन्नवाद सो दोस्तों इदा करिए कि अपने दोस्तों मित्रां नूं भी दस्या करो कि प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडी सेवा दे विच हाजर है ताकि होर भी स्रोते जिहड़े अपने नाल जुड़ सकन तो डाउनलोड ऐप नूं जिहड़ा हैगा www.pravasradio.com ते उपर तुसी जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप नूं करा सकते हो अपने दोस्तों मित्रां भैन भरावां नूं क्योंकि साडे प्रोग्राम म्यारी हुंदे आ जी बहुत म्यारी हुंदे आ वर्गल नहीं हुंदा और सच्चाई ते असीं हमेशा पहरा दिंदे आ सच कहण दी हिम्मत रखदे आ चाहे ओह अमेरिका च होवे चाहे इंडिया च होवे क्योंकि जदों मफाद ही किसी चीज दा नहीं ते फिर सच बोलण च कोई हानि नहीं है असीं बोलदे ही सच आ साडे जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे आ सच दे आधार दे उपर हुंदे आ सो वीरो ते भैणो भरावो प्रोग्राम नूं सुणिया करो और इन शेयर भी कर दिया करो जे तुहाडे हिस्से च कोई गल आउंदी है बड़ी मेहरबानी लोग गीत सुनदे आ जी मिस पूजा ते गीता जैलदार लो जी तुहाडी सेवा विच आपां पहला गीत लाता जी

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301

0: Hello.
1: Hello. दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके ताडे नाल हाजिर हो गए जी न्यूयॉर्क स्टूडियो तो न्यूजर्सी तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नु जी अज आपां कुछ गीत सुरिंदर शिंदा भाजी होना दे सुनांगे पुत जटा दे पहला गाना तुहाडी सेवा विच उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वह खबरां दा कुछ करांगे फिर डॉक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा दो घंटे दा प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए जी लो जी पेश है पहला गीत

किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणिया सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देण। पर उदासी जी जुल्म दी वाशड़ अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्होंने भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। उन्हों का गीत नहीं, मेरी मौत तो ना, मेरी मौत से ना रोयो, मेरी सोच नू बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उदे ते उदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उदी बोली नू लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उदी बोली ने जां उदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलो ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटि दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणां ने कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया, ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है, मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा, ते हैगा ते फिर ओ लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301

0: वाह वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ये के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पढ़े इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्यां वड्यां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदर नहीं वार सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तों दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वार सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ
1: ਹੋ। ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊਜ਼।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक जिहड़ा ए मैं आप जी दी नजर कर दी है विशेष करके,
0: थैंक यू जी,
1: जिहड़ा हुण मैं सुनाउण लगी
0: हां जी

0: Arriva porco, porco.
1: आज पिया तोहे प्यार दू ओ गोरी मैया तो पे वार दू इसलिए तू

0: खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
1: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये फिल्म नूर जहारा फिल्म
0: जहारा
1: हाँ जी।
0: अच्छा।
1: और मदन मोहन जी का म्यूजिक है जिन्होंने मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजर में।
0: वंडरफुल जी, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री क्या बात ने, पर जेडिया मेनू खास करके जेडे 90 दे 70 दे जे इथे के जे गाने ना 30 साल दे विच विच जेडे हन कमाल दे गाने। ए नहीं भी आज भी चलो कोई गाना वधिया मेनू लगदा, लेकिन पिछले सारे ही सोने लगदे ने गाने।
1: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना पुराने गीत तुसी लगा के सो जाओ तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओ तुहाडे लई लिखे गए ने।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: जज्बात ने।
0: हाँ जी हाँ जी, नो डाउट।
1: कोई भी गीत तुसी सुनोगे हर व्यक्ति नु ए लगदा ए मेरे लिए लिखा गया, ए मेरे जज्बात ने।
0: जी जी आराधना जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्नी सोहनिया रौनकां लाईयां, गाने सुनाए।
1: थैंक यू।
0: मैं तुहाडे नाम एक शेयर करांगा
1: जी। सॉरी,
0: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
1: क्या बात है,
0: तुसी कहन रहे हो ना कि जेड़े तुसी सुनोगे तो एवं लगेगा कि तरह मेरे वास्ते गीत लिखा गया है।
1: जी हाँ जी,
0: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने, दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने।
1: वाह भाई वाह, क्या बात है, जिंदे रहो।
0: दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने, ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने।
1: वाह भाई वाह, क्या बात है सर।
0: ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने, बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे, इस जग विच दुख बथेरे ने, बेरुखी दी बारिश बंद कर दे, ऑलरेडी दुख बड़े ने, उतो तुही भी दुख देन दे हो।
1: आहो नहीं, मैं तो आप जी नु ए कहांगी कि हुन आप जी रेडियो तो खाली जदो हुन ते एक सोहना जिहा पैग बना लियो।
0: नहीं ये तू अर्ली है जी, अर्ली है, सौन लगा। अच्छा इस वे मैडम जी 5 बजे ने साडे जर्मन दे विच।
1: अच्छा जी, धुप
0: लगी है, धुप लगी है।
1: ओके ओके। अच्छा जी,
0: अजे मैं अपने गार्डन च काम करना है, बूटे लाने ने, बहुत सोहने फुलां वाले।
1: अच्छा जी
0: हाँ जी हाँ जी,
1: गुड गुड, वेरी गुड।
0: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल, तंदुरुस्त रहो, जीउंदे वसदे रहो।
1: थैंक यू सो मच सर, और सारे प्रभात रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
0: थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू।
1: और बस आपा प्रभात रेडियो नाल इसे तरह प्यार सादी मोहब्बत
0: भरी रहे। बहुत बहुत मेहरबानी,
1: बाजवा साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
0: जी। साडे वल्लों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल, साडा भी प्यार उन्ना ही बरकरार, बल्कि दहां नाल जर्ब दे के। ठीक है
1: जी जी जी, थैंक यू सर,
0: हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुणी, जेड़े खूबसूरत गाने सुना के गए ने। ते दोस्तो इत्थे ही साडा अज दा प्रोग्राम जेड़ा ओ खत्म हुंदा, ते अगले हफ्ते सैटरडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवास रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जी दीआं कालां लांगा मैं।

यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात।

खरियां सुनाउण वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार मिठे बोलन वाले आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी प्रवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, प्रवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवाज रेडियो, बिल्कुल दोस्तों, प्रवाज रेडियो इज योर ओन रेडियो स्टेशन।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली

तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

सो दोस्तों गल इदा है भाई, सोचने वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होया नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओहो ही बाबा रामदयाल ते ओहो ही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मायने बदल गए ने, साडियां चलाकियां बदल गईयां ने, असी झुग्गियां तो कोठियां ते आ गए हां, और सैकलां तो कारां दे कारां तो हवाई जहाजां तक पहुंच गए हां। हुण असी चाची नूं आंटी कहिंदे हां। हां जी, ते चाची नूं आंटी कहिंदे हां ते पानी नूं वाटर कहिंदे हां असी, फुफड़ नूं अंकल कहना शुरू करता असी, तब्दीली नहीं आई है। साडी भाषा बदल गई, लकोकतियां बदल गईयां। जदों खोतियां तो मोटरसाइकलां ते असी आ गए, साडियां नजरां ते अदावां भी बदल गईयां, हर तरह दी मशीनरी आ गई, और कंप्यूटर युग आ गया, चारे पासे बदलाव ही बदलाव है। ठीक है प्यारे भारतीयो, ए सारे अविष्कार जेड़े तुसी गिन रहे हो, बदलाव दे जेड़े ने, ए विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग एदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उन्हें वो पुछया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग ते जापान आलियां दा हरा रंग उन्हां दा, बसंती रंग उन्हां दा, ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो? ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा? साडा। हां, झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसी गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्री खोज कीती है? सिफारशी टट्टू, नकलां मारन वाले, डिग्रियां मुल लैण वाले आविष्कार की करनगे यार? एक बारी ना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंटां ने जहाज बना लिया इंडिया च, बड़ी वड्डी गल है, जहाज बना लिया, ते उहदे अट्टे लगे ना जदों उहदी पहली फ्लाइट लैण, ते उहदे च सारे प्रोफेसर बह गए, ते प्रोफेसरां ने कहा कि अहीं पैराशूट तों बिना नहीं बहना, की पता स्टूडेंट ने किदां दा जहाज बनाया, सारयां ने पैराशूट पा ले, ते प्रिंसीपल अगली सीट पायलट दे नाल दी सीट ते बह गया, ते कोई पैराशूट नहीं लिया, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। प्रेस रिपोर्टर भी आए सन इधरों उधरों, ते प्रेस रिपोर्टर ने प्रिंसीपल नूं पुछया, सर पहली बारी जहाज उडाउण लगे ने मुंडे, ते पहली बारी मतलब कि तुहानू कोई खौफ नहीं, तुसीं पैराशूट भी नहीं लिया हैगा? हालांकि सारे प्रोफेसरां कोल पैराशूट ने, पायलटां कोल भी पैराशूट ने, तुसीं क्यों नहीं पैराशूट लिया? तुसीं इन्ने श्योर हो कि तुहाडी फ्लाइट जिहड़ी आ वधिया हो जाएगी, ते इहदी लैंडिंग भी वधिया हो जाएगी? ते प्रिंसीपल कहिंदा, लैंडिंग नूं ते गोली मारो, इह जहाज उडणा ही नहीं, मैं कादे वास्ते पैराशूट लै के बां, मैं अपने स्टूडेंटां नूं नहीं जाणदा किदां दे हैगे ने। हां, वड्डी देण नवें नवें अविष्कार जरूर करनगे, एम फिल दियां डिग्रियां, हां जी, पीएचडी दियां डिग्रियां नकली ते नकलां मार के
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਠਮੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ? 3 ਲੱਖ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, MPhil ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਠਮੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ? 3 ਲੱਖ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, SDM ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ।

0: हेलो जी
1: बबी जी, मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होने लिया कोई। मैं ना एक गाना ला लेना जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर।
0: हेलो जी
1: बबी हेलो जी हे कि हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना ओ मुकेश दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: अपडेट
1: मैं उन्नी देर गाना ला
2: बेल आइकन को प्रेस करें
1: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

अकेले में अकेले फिरी बाजार सर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं जाती गमला पतला दीवाना।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं तक यमला पगला दीवाना हो।

बैठे रहे हमारा तुहारी सोच से पठू पाऊंगा खरिया खरिया सुना वाला।

वारीवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बात है, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबा लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुई, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है वह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदर नहीं वार सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकती, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होने वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਮਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ